0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི རང ཉིད ཀྱི མེན ཆོས ལ ཟེ མ ཤེས པར ནོམ ནས རང ཉིད ལ ཁང ར ཆེ ཆེ ཡོད
1: ན ཡིན ཡིན ན ཏ ཤ ཧ ཡིན ན ཏ ཤ ར ཏ ཆེ མོ ཡིན ཡིན ཚོ པར ཏེ ཡིན ཚོ ཤོང ར གི ཧ ཡིན ན ཁོར སི ལེ ཏ ཁོ མ ན སྤེར ཧ སྤེར ལེ ཏ ར གི ན ཡ མ ན ཡར ཏ གུ ལེ ཏོ ན ལ ཡ ཡིན ཏ ཉི ཏ ཡིན ཏ ཁོར ཁོར ན ཡིན ཏ ཁོར ཁོར ན तो खेर से न्यामु तें बा खेर से ये ना पी ना कून से लेप तेर ने ये में नी चार बारो न्याप तेर अन्ना ठेमो तो के त्याप तेर ठेमो ये ने पार सो
0: ये जरा यंशु शंग ही सिंचो चूड़ी शिफ्ट देने सु नॉर मिन्यू वाशी ला ठेमो के मेजू तंग सुई की न्याशु चोल ये जो बा देगे या कसं कोमो ठेमो ना डोंग तू चूं ये
1: इन्हीं यार पार मर
2: भी है
1: ठेमो के सेमो तो हमारे
2: हाँ
1: ये आ सेमो ये आ को तो को पार बोल रहे
0: रिकी सोचा था मैं रिकी छोने कुरियो वाला डोंटो की नंजू यों से बसे मासे तंदर डंडू ले पे सोचा की कुछ चीजें टीवी में भी है ताना तो जब मैं निजम से बे क्या रे ये रूम कंजू वो ने देखो तंदर जो बात है क्या बात में
1: चिका मैंने तंग मिठाल मो मैं जो
3: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
0: तब ले बसेगा तब यू टूटो तो शेडो तो भी पियो तेरा मार्ग चंचल सीमा तो गुंचे चंचल में भी मैंने यह बच्चे से गुंचे लो चाहिए यों से भी वहीं जब मिला निंगे चाहिए भी पियो सीला किचु की तो ना चाहिए पियो तेरे मिल नां तो चलम से सुबह जेंगी निंगे जब ने मिल मार भी ते भी चीजों की नंबर देना नाजन दे चीबो यें बा चाबो यू वहीं जब बुगे पियो 我们不懂军队明白能做的信念，皮肤一落完了，那就越吧。

0: जी ना खवा ये से ना रहना ले ये दिए आले आले यंगा यंगा दे आ दे आ ना से भी गिव क्यों नहीं दियो जेम भी दा चोल नि नि जित खसा चे भी ना बेद सेम जे ग्यान रिस्या दी गल अर लो देस लेने तंदो चांस देस यो माशे मेजे दे निंग बुस्ता गर्दो आ ए
1: बुसा द ता रिब गबर कोंट लाजे खाजि देसि मेबा मिजि दे फोलो थिने दा छाजि गबरि ने चामु खंजे रस छोई ना संगुजि रिबा दो दो
0: ए बुसा मा अरा जुइ जि लान दा मसि राशे दा जे मासे गबरु लुंग लाजे या छिने मा दो गुदु या लुंग सिब दा Yaya chewa kiya zhi
1: Chou lin piye su ni yo yu guo zhi
0: Nye chou yang dang bi yi
1: Chen nga hai pa zhu yi Bu bu ji gi tep de bu yo ma zhi
0: Ji zhang yin jo ha la ma yin bi zhi Zhang lu lu zhi ki bu zhi de wu da ha guwa su ngay Zhe ma zhi Yin ji li zhang na lo du yang ga zhu ma zhi Kun zhu na lo mi meng gu yo zhi ba Ji ge mi lo de ji ge mi nye de zhi bin zhang ki bu yung gu zhi ba Ta ma de zhang lung ge ge zhi 就让不过转，你也看他说话去。哎呀，哎，呀，俺爷爷是面对这个面对，哎嘿嘿嘿，没什么要不多的。哎，这要不多是要不多呀，哈哈哈哈哈哈。哎，没什么要不多啊，全都懂我讲的，没什么大宝的。
2: 让了他们姐，你们都念多啊！哈哈哈哈哈！阿姐，让他做客气。别傻呀，莫说我们龙兰的话。爸爸，
3: 俺老有病。
2: 阿姐，岂不听这老样子？岂不答应？爸爸让对的。
3: 年纪小的也吃了么子吃的，我让客人吃也有嘛事，我求领个那头大了，随时都是个有事多，我让他午餐罢了，这碗面的哥哥大。
2: 爸不让客气做啊，我让小姐姐俺懂得等个月。
3: 啥都懂得。
2: 哦，等大姐，你爸不让歇呀么就？
3: 嗯，等大哥嘞。
2: 我让就难是有些些人是天下，但我让就你把面面的不来吃吃个。
3: 嗯，到底吃我三个吃的，这只两个吃啥呗？
2: 孙子的，今个面就今个娘子一路，等到女儿女婿去，六十三亩吃吃啥？这家俺年年了吃就下雨，这些年是过得有。
3: 嘿，第二个就是，我那也个就是，对对，等自己，对对个米过么的。
2: 你还过是？
3: 嗯，
2: 有。爸爸让俺子女了。

0: ये हूँ एम जी कर सक दो आ ये ना तो जीव दो वे
1: सामने कंजो मार दो जान ना तो जीव मिल दो चाना दो जे पोल क्यों दो चेसे गा जिन पी जान वो चो लिंग डा का चेपी मिल दो गे
0: दिन जे शेन चो करे वाले ये मरन लामा था चेस
1: चिन गा रानी का चेस तो ये दाग मां हम सुन चेदिए ना कुंग क्यों मार जी जामिंग का ने ट्वेंबे जी ले वो चो लिंग चे का क्यों
0: ये हो रंगे आनीम तो देव सर बा
1: तनी जुमा शु गा रानी कब चे का साजन सों जा
0: 脸就有马蹄
1: 然的恩吉谢捏过去然的金别擦身破吧哈过去捏哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 拿三姐的鱼呗。
2: 你拿了小天不听他过意了，他们的鱼你小天就我没拿了怕这的我
1: 听自己妈写出去那你也住你的